0: DJ 战舰。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 20437।
1: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

0: अजमा यू हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN
1: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN

दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सर्फ एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को। एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।